0: कर रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का, आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
2: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। LOP की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भ्रम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
3: मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने ऐसा आंदोलन करके देश में अराजकता फैलाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ भूमिका लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी की पार्टी अनेक साल सत्ता में रही है और राहुल गांधी जी के सरकार ने भी हर बार मतलब इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया है। तो ज्ञानेश कुमार जी है, ज्ञानेश कुमार जी सिस्टमेटिकली जो अपने संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके मुताबिक उनका अपॉइंटमेंट हुआ है।
4: Well, preparations are underway for a grand celebration in New Delhi today, and that is to mark 25 years since Narendra Modi first took the oath as Gujarat Chief Minister, and that was on October 7th, 2001. Nearly 13 years in Gandhinagar and is now a third term as Prime Minister. To mark this milestone, Prime Minister Modi will address the nation at 11 a.m. from Indira Gandhi Stadium, and this is going to be under the Seva Jyoti program. The Prime Minister will light the Seva Jyoti and is likely to address elected representatives from Panchayat to Parliament. Ahead of the event, the Union Cabinet also passed a resolution listing 10 themes from his governance record. The Union Cabinet today, yesterday that they hailed Prime Minister Narendra Modi's 25 years of uninterrupted leadership as the head of government, first as a Gujarat Chief Minister and then as the Prime Minister, saying his extraordinary journey was guided by the principle of nation first and citizen first. Take a look.
5: Narendra Damodar Das Modi, Ishwar ki shapath leta hun ki
6: Twenty-five years, a journey that began in Gujarat and grew into a national model of governance. The Union Cabinet has passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of government. The resolution highlights 10 defining themes.
7: आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में है.
6: The first theme, taking Gujarat's governance experiments national. Swagat, which allowed citizens to directly raise grievances, is highlighted alongside Pragati, which brought governments together to review stalled projects. The resolution also points to Jyotigram, Gujarat's model of separate electricity feeders for agriculture, as an example of a state initiative scaled nationally. The second theme, welfare and dignity. The resolution links PM Modi's stated personal experience of poverty with programs covering housing, water, banking and healthcare. It cites nearly 70 crore Jandhan accounts, more than 4 crore homes, and the government's estimate that 25 crore people

0: Now, high political drama unfolded in the national capital as opposition MPs stepped up their protest against CEC and marched towards the ECI headquarters. Leader of opposition Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, and several opposition MPs, including Akhilesh Yadav, were detained after staging a sit-in at Akashwani Bhavan. After their release, Rahul Gandhi warned of a day of reckoning while adding that not a single, what he termed as traitor, would be spared. The Election Commission, however, has pushed back, calling the request for a meet of around 240 MPs as unusual. The Election Commission has said that the MPs approached after 4 p.m. and rejected an offer that was made to them to send an official to meet the EC. The BJP has also accused the Congress of spreading falsehoods and trying to spread anarchy.
1: They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
2: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है? और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
3: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख कर लिख रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का, आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, एक ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
5: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
6: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit. From friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand. हर रोज।
8: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
9: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
10: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
11: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
12: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: But this is an opportunity for everyone to look at how Prime Minister Narendra Modi's policy and governance have been milestone associated with tenure. At the national level, remember, Prime Minister Narendra Modi's governance has highlighted initiatives such as Jan Dhan Yojana for financial inclusion.
1: भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज का दिन ऐसे व्यक्तित्व के 25 वर्षों की उस यात्रा का साक्षी बनने का दिन है, जिस यात्रा ने संघर्षों के बीच अपनी शुरुआत की और हर चुनौती का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिनकी तप साधना संकल्प, जिन्होंने जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, जिनके लिए जनसेवा ही राष्ट्र सेवा का मार्ग बनी और जीवन के इसी संकल्प को लेकर राजनीति में केवल सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, ऐसे हमारे हम सब के अपने हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के प्रधान सेवक को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। मैं सर्वप्रथम उनके सार्वजनिक जीवन के साथ साथ उनके इस 25 वर्ष की सेवा और समर्पण की इस यात्रा को, जो अनवरत है, अविचल है, अथक यात्रा के लिए 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश के सभी जिले से लोग आपके इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं और मैं कह सकता हूं भारत की 140 करोड़ जनता आज अपने प्रिय नेता को आशीर्वाद भी दे रही है और प्रिय नेता को लगातार शुभकामना दे रही है यशस्वी होने की, कि वो विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। आपने इन 25 वर्षों में दीपक की तरह स्वयं को जलाकर अपने परिश्रम और समर्पण से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में विकास, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का उजाला फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके दीर्घ यशस्वी सार्वजनिक जीवन के लिए आपको शुभकामना देता हूं। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने अपने किताब में 2014 के चुनाव को टेक्टोनिक शिफ्ट के रूप में कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति का यह बड़ा बदलाव है और उनके अनुसार जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके जनता के सामने एक घोषित उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया और बाद में जनता का अपार जन समर्थन मिला और वो देश के पहले चुने हुए घोषित प्रधानमंत्री के रूप में आए, यानी इसके पहले कई चुनाव हुए, चाहे वो जनता ने किसी पार्टी को समर्थन दिया हो या गठबंधन को वोट दिया हो, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का नाम तय होता था। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा केवल पार्टी का चेहरा नहीं था, केवल भारतीय पार्टी के द्वारा उन्हें नामित नहीं किया गया था, बल्कि वो सीधे जनता के सामने चुनाव कर प्रमुख चेहरे के रूप में पेश किया गया और देश की जनता ने पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें जनता ने सीधे जनादेश देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, आज़ादी के बाद किसी चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पहले उनको कांग्रेस के नेताओं ने चुना। इंदिरा गांधी जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहली बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो उन्होंने भी

अपने माता के दिवंगत होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने और बाद में जनादेश लेके आए। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी राजनीतिक परिवार के नहीं, किसी विरासत के साथ नहीं, उन्होंने केवल सार्वजनिक जीवन, संगठनात्मक अनुभव और जनता के जनादेश के आधार पर देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। साथियों, पिछले समय में विश्व पटल पर वैश्विक अस्थिरता का दौर रहा है। कोविड के बाद के कालखंड को अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में एंटी इनकम्बेंसी का दौर रहा, ग्लोबल डेमोक्रेटिक क्राइसिस का दौर रहा। इस कालखंड में भी यदि कोई नेतृत्व दृढ़, अडिग और अटल रहा तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहा। मित्रों, आपके इस नेतृत्व की विशेषता है कि बड़े वैश्विक संकटों का सामना करते हुए भी आपने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और उसको अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा। आज का दिन मैं उन माताओं और बहनों के तरफ से आपका अभिवादन करता हूं जिनके लिए आपने शौचालय निर्माण से लेकर उज्ज्वला की योजना लाई, जिनके लिए आपने सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में इन योजनाओं को लाया। मैं आज उन बहनों के तरफ से भी आपका अभिनंदन करता हूं जो 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी बहनें हैं जिनको आत्मनिर्भर बनाकर आपने महिला सशक्तिकरण के लिए नई मिसाल कायम की है। आपने केवल वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है और अब 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति भागीदारी को भी आपके नेतृत्व में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं आज देश के 11 करोड़ से ऊपर उन किसान भाइयों के साथ साथ उन सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं जिनके लिए आपने किसान श्री सम्मान योजना लाई। आपने कृषि को एक विभाग नहीं माना, आपने कृषि विभाग को कृषि विभाग के साथ साथ किसान कल्याण विभाग के रूप में परिवर्तित कर किसानों के प्रति देश की नेतृत्व का क्या सोच है उसको आपने प्रदर्शित किया। मैं आज उन खिलाड़ियों के तरफ से भी आपका अभिवादन करता हूं जिन खिलाड़ियों ने को आपने खेलो इंडिया के माध्यम से नए अवसर दिए और आज हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। मैं आज उन परिवारों के तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं जिनका अपना आशियाना नहीं था, जिनके अपने छत नहीं थे, उन 4 करोड़ गरीब परिवारों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर उनके घर पर छत, उनके सपनों का घर देने का काम आपने किया है। कोरोना जैसी आपदा में जब पूरा विश्व ठहरता गया था, आपने करोड़ों भारतवासियों के बेटा और भाई बनकर उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन से लेकर 80 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना लाई जिससे हमारा पूरा देश उस अस्थिरता और उस आपदा की घड़ी से बाहर निकल पाया। मैं आज देश के युवाओं के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश 2013-14 में देश में युवाओं में निराशा और नाउम्मीदी के पूरा माहौल बना हुआ था, उनके अंदर आपने आशा और उम्मीद की नई किरणें जगाई और यही कारण है कि आज देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप से अधिक 125 से अधिक यूनिकॉर्न का साक्षी है कि आज का युवा आपके नेतृत्व में केवल जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनकर उभर रहा है और इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। आपने इस देश को आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की कल्पना देकर हम सभी भारतवासियों को भारत को 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाला देश बनाने की दिशा में आपने प्रेरित किया है। मैं आज के दिन उस कल्पना को भी अभिनंदन करता हूँ जिसने नई सोच और नई दिशा दी। इस देश में विभाजनकारी राजनीति का एक बड़ा दौर देखा है पर आपने इस देश को ज्ञान की नई सूत्र दिया। आपने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को केंद्र में रखकर सरकार की योजनाओं को बनाने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के दिन मैं जनसंघ कालखंड से लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ कि हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को और सदैव अटल जी की सुशासन की व्यवस्था को आपने पूरी पारदर्शिता के साथ देश के अंतिम व्यक्ति के विकास की योजनाओं में आपने जोड़ा है, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम हो, चाहे 370 के समाप्ति का विषय हो। हम कह सकते हैं कि आपने देश को वो सम्मान दिलाया है, वो एकता का भाव दिया है जिससे आज पूरा देश 140 करोड़ देशवासी एक साथ चलकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने केवल विकास ही नहीं दिया, आपने हमें मौका दिया विरासत पे गर्व करने का, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर हो, हम सोमनाथ के पवित्र मंदिर को याद करते हैं। मैं आज कह सकता हूँ कि आपने केवल इमारतें और

0: इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमारे आस्था के केंद्र को आपने फिर से सृजित किया है। सेवा तीर्थ के माध्यम से अमर शहीदों के सैनिकों को समर्पित नेशनल वार मेमोरियल के माध्यम से, और हम कह सकते हैं हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से आपने पूरे देश के विरासत को गर्व करने का हम सभी को मौका दिया है। मैं आज उन परिवारों के तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आयुष्मान भारत से आपने 60 करोड़ परिवारों को जोड़ा है, वो परिवार आज स्वास्थ्य के बीमा के साथ जो लाभ ले रहे हैं, उसका आशीर्वाद समस्त देशवासी आपको देते हैं। मैं आज के दिन उन वीर सैनिकों के तरफ से भी आपको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके साथ आपने केवल दिवाली और होली नहीं बनाई, आपने उनके मनोबल को ऊंचा करने का काम किया, उनके सीने को चौड़ा करने का काम किया है। आज के समय एक समय था जब इस देश में सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी, पर आज आपने स्पष्ट संदेश दिया है ये नया भारत है, ये अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति दृढ़ता से खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और हमारी सेना हमारी शान है, आपने इस बात को प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से आपने नेतृत्व दिया है, 35 देशों से अधिक आप लोगों देशों ने आपको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। हम कह सकते हैं कि यह सम्मान केवल आपका नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का है। ये भारत के महत्व का, भारत के प्रभुत्व के बढ़ते हुए का प्रतीक है। मैं आज के दिन समस्त भारतवासियों के को जो गर्व करने का आपने मौका दिया है, मैं उसके तरफ से भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आज आपके नेतृत्व में देश को नई सोच, नई दिशा मिली है। हमारी संस्कृति और विरासत, ऐसे कई आयाम आपने दिए हैं जो हम सबको गर्व कराता है। चाहे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का विषय हो, भारतीय संस्कृति के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, और हम कह सकते हैं इस देश के लोगों को नई सोच आपने दी है। सीमाओं पर पड़ने वाले गांव, जिनको अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती थी, आपने उसको परिवर्तन कर नई सोच दी है। आपने कहा है कि वो भारत का प्रथम गांव है और भारत के लोगों के सुरक्षा और स्वाभिमान का पहला गांव है। मैं आज आपके दिन आपके इस सोच को नमन करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है, तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने देश की शक्ति को, देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी, 25 वर्षों की आपकी इस यात्रा को संघर्ष से संकल्प तक, संकल्प से सिद्धि तक और जन सेवा से राष्ट्र सेवा की इस यात्रा को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज आपके माध्यम से देश के लोगों को जो संकल्प विकसित भारत का मिलने वाला है, उस संकल्प के साथ भारत अब निरंतर आगे बढ़ेगा और अपने विकास के साथ साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा। 21वीं सदी का भारत निश्चित रूप से विश्व की अगुवाई करेगा और उसका नेतृत्वकर्ता आप होंगे प्रधानमंत्री जी। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आज देश भर के समस्त जिलों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जुड़े हैं, मैं आज उनके तरफ से आपका अभिवादन करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आइए प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से देश के लोगों को ऊर्जा मिलने वाली है, देश के लोगों को जो दिशा मिलेगी उससे हम विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से, मैं समस्त लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी को भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम।
1: माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक माननीय नितिन नवीन जी, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, सेवा ज्योति यात्रा के सभी यात्री, करोड़ों करोड़ों देशवासी, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी का, सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस दौरान इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभाओं में चुनाव हुए हो या लोकसभा के चुनाव, जनता ने हमेशा मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूं। मैं सेवा ज्योत यात्रा में हिस्सा लेने वाले सभी नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं। आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। लाखों करोड़ों देशवासियों का विश्वास और लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही है। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा, देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं गई। हर घटना ने मुझे सिखाया। मोरबी की बाढ़ ने मुझे दिन रात सेवा कार्यों में जुटने का रास्ता सिखाया मुझे सेवा करने का भाव। भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे असफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा

करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ, कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयंसेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे। We will do it. विकसित भारत by 2047. We will do it. विकसित भारत by 2047. मेरे साथ बोलिए। टॉप थ्री इकोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।

सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं? मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली, मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योग कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए
कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। कर्म देश के लिए, कर्म देशवासियों के लिए, और इसमें भाव यही है, मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं, श्रेय की भी चिंता नहीं। देश ने अवसर दिया, लोगों ने विश्वास दिया, परिस्थितियों ने सीख दी, जिसकी वजह से मुझे देशवासियों की अविरल सेवा का अवसर मिल रहा है।

देवी और सज्जनों, पद प्रतिष्ठा अधिकार, जब बात देश की होती है तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। हमने इस अनादि राष्ट्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ भी नहीं है। पद प्रतिष्ठा तो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन भारत जैसी पुण्य भूमि नहीं मिलेगी। वो भारत जिसने अंधकार के युग में भी मानवता को ज्ञान दिया, मूल्यों का प्रकाश दिया, उस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलना ही अमूल्य है। इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है। साथियों, जब मैं गुजरात में था तो एक मंत्र के साथ जीता था, और वो मंत्र था, गुजरात के विकास से देश का विकास। लेकिन वो दौर चुनौतियों से भरा था। तब मेरे पास न तो सरकार चलाने का अनुभव था और न ही प्रशासनिक

व्यवस्था का बहुत ज्ञान था। मेरे पास तब कुछ था तो वो था जनता पर विश्वास, जनशक्ति पर ये भरोसा। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरे वर्षों के काम का निचोड़ था। इसी विश्वास को मैंने अपना सामर्थ्य बनाया। मैंने निर्णय लिए जनता को साथ लेकर, नीतियां बनाई जनता को साथ लेकर, नीतियों को लागू किया जनता को साथ लेकर, और वही मंत्र मैंने कहा, वी विल डू इट, वी विल। और साथियों, जब जनता साथ हो तो परिणाम भी आते हैं। गुजरात ने करके दिखाया। आज गुजरात जहां पहुंचा है उसका उदाहरण दुनिया देती है। साथियों, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव मिला उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जमीन पर समस्या क्या है, समाधान क्यों नहीं हो पाता, फाइल क्यों अटकती है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होती है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मैंने खोजा। और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया। और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी। घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, We will do it। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है।

तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। साथियों, बदलाव की इसी कहानी का एक और उदाहरण, शानदार उदाहरण खेती भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, आजादी के इतने दशक बीत गए, अभी का जो दशक है, बीता 10 वर्ष है, वो सबसे अधिक रहा है। साल 2015 से 2025 तक का दशक, 2015 से 2025 तक का दशक इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेती के लिए जाने वाले बड़े देशों में भी इतनी तेज ग्रोथ नहीं रही है। ये तभी होता है जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है।

साथियों, सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। हमारे देश की एक बड़ी त्रासदी रही है, राजनीति के लिए समाज को वोटों के हिसाब से बांट दिया गया। आप सोचिए, खेत में पानी नहीं आता तो किसको नुकसान होता है? क्या एक जाति के किसान ही इससे प्रभावित होते हैं? बिजली नहीं आती तो क्या सिर्फ एक समुदाय के घर में अंधेरा रहता है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके। यही सैचुरेशन है, यही बदलाव की असली गाथा है। साथियों, हमने इस देश पर जन्म लिया, मां भारती की गोद में पलने बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। ये हमारे ऊपर मां भारती का ऋण है, इस देश की पावन पुनीत माटी का ऋण है। क्या हर भारतीय का यह संकल्प नहीं होना चाहिए कि वो कर्तव्य की पराकाष्ठा से कुछ कर्ज उतारे? हमारे दिल की हर धड़कन में क्या एक ही संकल्प नहीं गूंजना चाहिए? हमें भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। भाइयों बहनों, जो भारत कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता था, जिसके किस्से सुनकर दुनिया समृद्धि की कल्पना करती थी, लेकिन समय का चक्र बदला, गुलामी का कालखंड आया, आक्रांताओं और लुटेरों ने उसी भारत को लूटकर तबाह कर दिया। जो भारत दुनिया को दिशा दिखाता था, उसके विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, उसके पुस्तकालय जला दिए गए। एक ऐसा भी समय आया, छोटे छोटे संकट भी विकराल होने लगे। भयावह भुखमरी, विदेशियों के हमले, संस्कृति सम्मान और स्वाभिमान पर कृत प्रहार, ऊपर से ऐसी गरीबी और विभीषिकाएं, लेकिन तब भी मां भारती की संतानों का साहस नहीं टूटा। हर बार बार बार कोई दिग्दर्शक जन्म लेता रहा, सामान्य मानवी में नई सुबह का आत्मविश्वास जगाता रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी की वाणी है, एक दिन एक अद्भुत गौरवशाली और महान भारत का उदय होगा। विवेकानंद जी कह के गए हैं। महर्षि अरबिंदो ने भी कहा था,
महर्षि अरबिंदो ने कहा था, भारत के भाग्य का सुरूर, भारत के भाग्य का सूरज जरूर उगेगा और उसकी रोशनी पूरे विश्व को आलोकित करेगी, श्री अरबिंदो ने कहा था। साथियों, अदम्य साहस और अमिट जिजीविषा में तपे हमारे वो पूर्वज, हम उन्हीं की संतान है। उन्हीं के तप, त्याग और बलिदानों का परिणाम है आज हमारे पास एक ऐसा देश है जहां हमारे सपने स्वतंत्र है और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। आज हम खुद ही अपनी नियति के नियंता हैं। इसलिए आज ये मां भारती के साथ अन्याय होगा अगर हम छोटे लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। ये राष्ट्र के सामर्थ्य के साथ अन्याय होगा अगर हम आसान लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। ये समय है जब हम एक देश के रूप में बड़े लक्ष्य रखें, ऐसे लक्ष्य जो अभूतपूर्व हो, ऐसे लक्ष्य जो असाधारण हो। विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप थ्री में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है कि टूरिज्म की बात हो तो दुनिया भारत का नाम ले, पढ़ाई की बात हो तो दुनिया भारत को चुने, मनोरंजन का डेस्टिनेशन हो वो भारत हो, हेल्थ एंड वेलनेस की प्राथमिकता भारत ही बने, स्पोर्ट्स का सिरमौर भारत हो, इनोवेशन का हब भारत हो, टेक्नोलॉजी में भारत का डंका पूरे विश्व

आज पायलट की चर्चा है, एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया मेड इन इंडिया प्लेन की चर्चा करेगी। साथियों, ये लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब वर्तमान में हम दूरदर्शी नीतियां भी बनाएं और परिश्रम की पराकाष्ठा भी करें। हमारे देश में समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ समाधान भी है। अब यह समय आराम का नहीं है, यह समय जोश के साथ आगे बढ़ने का है, खुद को देश के लिए खपा देने का है। आज भारत जितना युवा है, आज भारत में जितने युवा है, वो इतिहास से मिला एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा, आपके दादा दादी, नाना नानी, उस पीढ़ी के लोगों ने जो कष्ट झेले, वो आपको झेलने न पड़े, आपकी संतानों के भाग्य में वो कष्ट न हो, इसके लिए हमें आज ही काम करना होगा और मैं वही कर रहा हूं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं ये विकसित भारत का लक्ष्य तो बहुत दूर का लक्ष्य है, लेकिन मैं हर देशवासी को कहूंगा, आप आज से ठीक जरा इतिहास की तरफ नजर कर लीजिए। आज से ठीक 100 साल पहले के भारत को याद कीजिए। 20वीं सदी का वो तीसरा दशक, 1920-30 का कालखंड, हजार साल की गुलामी का असर और आघात, टूटा हुआ मनोबल, गरीबी में जकड़ा भारत, समाज को बांटने के षड्यंत्रों से घिरा भारत, ऐसे में आजादी का भरोसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। 100 साल पहले की कल्पना कीजिए, लोग लड़ तो रहे थे, अपने बलिदान भी दे रहे थे, लेकिन भारत फिर से उठ खड़ा होगा, इसकी कल्पना भी कितनी कठिन रही होगी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो असंभव लगता था वो हुआ। करीब 20 साल बाद ही, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं, 25-27-30 की, 1925-27-30 की बात कर रहा हूं, 20 साल के भीतर भीतर देश ने अंग्रेजों को खदेड़ कर दिखा दिया था। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत आजाद हुआ, और इसलिए मेरा विश्वास है आज 2026 में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। कोई कारण ही नहीं है कि भारत अब रुके। और साथियों, तब तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब तो हम 40 करोड़ से भी कम थे, आज हम 140 करोड़ से भी ज्यादा है। 140 करोड़ देशवासी, हम मिलकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। वी विल डू इट। साथियों, मेरा ये विश्वास देश की सिद्धियों से मजबूत हुआ है। यही भारत है

जिन्होंने फ्रजाइल फाइव इकोनॉमी को टॉप फाइव में बनाया। हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में करीब 60 वर्ष लगे, लेकिन जब सही नीतियां मिली, सही दिशा मिली, तो उसी भारत ने 12 वर्षों में ही $2 ट्रिलियन से अधिक ग्रोथ करके दिखा दी। आप कोरोना का वो दौर याद कीजिए, दुनिया कहती थी कि भारत का क्या यही कर लेगा क्या, भारत तो जैसे मौत के ढेर पर बैठा है ऐसा माना जाता था, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने दुनिया को गलत सिद्ध किया। भारत ने खुद को भी बचाया और दुनिया के 100 से अधिक देशों में भी लाखों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई, और इसलिए हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। साथियों, मुझे पेरिस में हुई COP21 की बैठक याद है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा, तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किए। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। साथियों, आज विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है, और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है। आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है और देश इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा। हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। साथियों, एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, ये भी किसने सोचा था, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया है। यानी जिसको कल्पना से परे समझा जाता था, वो सिद्धियां भारत ने हासिल की है। इसलिए मुझे 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और 25 साल का मेरा अनुभव कहता है कि हम अपनी आंखों के सामने भारत को विकसित होते देखेंगे। साथियों, आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2047 में हमें कहां पहुंचना है, हमें आज ये तय करना है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी से क्या करना है। और इसलिए आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान

0: चांद बने, किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े, भारत जेनेटिक जैसी फील्ड में लीडर बने, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो, हम एआई की फील्ड में ग्लोबल हब बने, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए, मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव दुनिया भारत का सामान खरीदने के लिए लालायित हो, दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाएं। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है, भारत असीमित ऊर्जा का अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है, हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? हम बढ़ेंगे तो, हम सीखेंगे तो, हमारे संकल्प होंगे, हमारा परिश्रम होगा, हमारी शक्ति होगी, हमारी भक्ति होगी, हम इनोवेट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हमारा प्रण होगा, हम जिएंगे। साथियों, जब हम ये भावना लेकर चलेंगे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। हमें आज से शपथ लेकर आगे बढ़ना है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम मेरा संकल्प होगा, राष्ट्र समृद्धि मेरा प्राण रहेगा, राष्ट्र की सेवा मेरा लक्ष्य रहेगा और नागरिक देवो भव का मंत्र मेरी राष्ट्र आराधना साधना का आधार रहेगा। कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा, स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यय तक मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: Today marks 25 years since Prime Minister Narendra Modi, now in his third term as Prime Minister, first assumed public office as Chief Minister of Gujarat in the year 2001. Prime Minister Modi is addressing the BJP cadre. He's just wrapped that up. That speech, a long one, to mark 25 years since he took the oath as the Gujarat Chief Minister on the 7th of October in the year 2001. Nearly 13 years in Gandhinagar and is now a third term as Prime Minister of India. Modi has spoken about his vision for India, saying the country will achieve its ambitions through self-reliance.

0: आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi there addressing the BJP cadre to mark 25 years since he first took the oath as Gujarat's Chief Minister on the 7th of October 2001. We will decode his speech in moments from now, but first we're going to be slipping into a short break.

0: Prime Minister Narendra Modi addressed BJP cadre to mark 25 years since he first took the oath as Gujarat Chief Minister on the 7th of October back in the year 2001. Nearly 13 years in Gandhinagar and now a third term as Prime Minister. Prime Minister Modi has spoken about his vision for India, saying the country will achieve its ambitions through self-reliance, global manufacturing and technological progress. He then reflected on India's journey, saying there was a time when the country was written off and people called India a lost cause. But he then said he believed that India could do it, quote unquote. Prime Minister Modi said India's resilience is now widely recognized. He also spoke about terrorism, saying previous governments were soft on terror and that terrorism had once posed a major challenge to the country. Listen into excerpts from his speech.
1: Jab maine Gujarat ke mukhyamantri ke roop mein shapath li thi, tab socha nahi tha ki kabhi ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस दौरान इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभाओं में चुनाव हुए हो या लोकसभा के चुनाव, जनता ने हमेशा मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूं। विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए। टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी इट्स अ गॉन केस, इट्स अ गॉन केस।

0: ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी। घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है और देश इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा।
1: All right, let's decode the Prime Minister's speech with my colleagues Akhilesh Sharma, senior journalist Bhupendra Chaubey also joining me live, and Ranveer Singh who's joining me live from Varanasi. Bhupendra, coming to you first, if you could just break down for our viewer the big takeaways when it comes to the accomplishments that the Prime Minister has spoken of and the challenges with the promise of a Viksit Bharat in 2047.
2: I think speech coming from the Prime Minister at a time when the Prime Minister himself is being ridiculed, is being questioned by the opposition. If you really break down his speech today into critical buckets, essentially he's saying that don't consider me to be someone who's here only for electoral politics. Like when he says that if I wanted to just join or contest a chunav, I could have done that a long time back. He's positioning himself as someone who is a genuine believer in the cause of Maa Bharati. And what is the cause of Maa Bharati? That Maa Bharati must continue to develop and must continue to progress. So Viksit Bharat, developed India by 2047. That's been a slogan of sorts for the BJP for a long time. And now, as he completes his 25th year in public service, again the Prime Minister is reiterating his commitment and also asking people to join him in that commitment. Some of the other critical points which he's made, when he speaks about how in the past people used to think that Indian economy is dead and gone, and now everybody is looking towards India. Again, it's a part of a certain playbook which has been created by the Prime Minister over a period of time, and he's only reiterating that. But if you ask me, I thought the most interesting argument which he was trying to make in

0: as it came under the direct control of the Modi government at the center. In solving Kashmir, Modi promised unprecedented development for the entire region.
1: जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा।
2: जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डूड,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
16: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलिशियस, हेल्दी, एवरीडे।
18: डिप्लोमेटिक लीडर्स एंड इंडस्ट्री आइकॉन्स यूनाइट एट द एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया जापान समिट, फ्रॉम फ्रेंडशिप टू फ्यूचर, एज वी ऑनर द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे विद चीफ गेस्ट मिसेस आकी आबे। टू इकोनॉमिक जायंट्स, वन शेयर्ड विजन। Be part of the conversation on NDTV World.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई। जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई।
1: Reactions coming in from union ministers and BJP leaders on Prime Minister Modi's 25-year political journey.
2: 7 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रकार से स्वर्णिम और युगांतकारी दिन है। आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर 25 साल लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी।
3: आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज का दिन ऐसे व्यक्तित्व के 25 वर्षों की उस यात्रा का साक्षी बनने का दिन है जिस यात्रा ने संघर्षों के बीच अपनी शुरुआत की और हर चुनौती का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिनकी तप, साधना, संकल्प, जिन्होंने जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, जिनके लिए जनसेवा ही राष्ट्र सेवा का मार्ग बनी और जीवन के इसी संकल्प को लेकर राजनीति में केवल सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, ऐसे हमारे हम सब के अपने हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के प्रधान सेवक को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
4: आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ये वो समय था जब गुजरात एक भीषण आपदा की चपेट में था। दूसरी ओर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबे जो अव्यवस्था, अराजकता का एक नया तांडव पैदा करना चाहते थे, उन स्थितियों में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इस दायित्व को संभाला था आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की, गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया।
1: And the other developing story of the hour, an FIR has been filed against Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. The Delhi police has registered this FIR in connection with the alleged forcible entry into Akashvani Bhavan Tuesday. Delhi police had received a complaint against the Gandhis, their supporters and MPs present with them for allegedly entering the Akashvani office without the permission, and that took place last afternoon and evening. Meanwhile, the Congress chief Mallikarjun Kharge has invited the India Bloc MPs for lunch at Sagar Ratna, which is a South Indian restaurant in Jodhpur. After this lunch meeting, the opposition MPs are likely

0: To stage a protest against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, the India Bloc has sought an appointment also with the President regarding the issue of the Chief Election Commissioner. Opposition MPs are likely to march from Parliament to the Rashtrapati Bhavan on the 9th of this month.
1: Rahul Gandhi Neta Pratipaksh hain. Rahul Gandhi ke saath Lok Sabha Rajya Sabha ke sadasya the. Rahul Gandhi koi zabardasti kahin nahi ghus rahe hain. Ye inke baap ki cheeze nahi hain. ये देश की चीज़ें हैं, ये देश की संस्थाएं हैं, ये इनके बाप की संस्थाएं नहीं हैं। एफआईआर कर दी, कर दो एफआईआर, 10 FIR कर देंगे। मिलने को कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी करो ना एफआईआर। अब इनके घरों में जाएंगे हम, इनके घरों के बाहर बैठ जाएंगे जा करके। ये समझ के आ रहे हैं अपने आप को, ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई आर पार होगी, ये गलत फहमी दूर कर दें कि हम एफआईआर से डर जाएंगे या दब जाएंगे।
2: Rahul Gandhi's behavior yesterday before the election commission is nothing short of vandalism and an attempt to create anarchy in the country. Multiple efforts to create aspersions, suspicions, questions on constitutional institutions, whether it is the judiciary, whether it is the election commission and such other institutions, is a deliberate attempt at creating chaos in a country where Prime Minister Modi has provided political stability for the last one decade. The frustration of the Congress party of being rejected multiple times by the public is being displayed in this kind of a anti-constitutional behavior.
3: We were detailed multiple times, and brutal force was used by not only Delhi police, also central forces. But what happened yesterday on the Parliament Street was historical. The march by the MPs will resonate in the nook and corner of this country. And we have decided that this is just the beginning. The entire nation is going to witness much more vigorous struggles and agitation to remove Gyanesh Kumar from his post. Now, we feel that if the government of India is complacent and not advising Gyanesh Kumar to step down, Modi Shah campaign will have to give a heavy price for this. That is what we feel so.
4: Neta Pratipaksh Rahul Gandhi, जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं। एक ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
5: साक्ष्य और सबूतों के आलोक में क्या राहुल जी ने जो कहा या बाकी सांसद और आम आवाम कुछ अलग कह सकते हैं क्या? शरीके गुनाह सब है। ज्ञानेश जी को इतना अहंकार और टच मी नॉट एटीट्यूड, यू कांट डू एनीथिंग टू मी, ये कहां से आता है? वो इम्यूनिटी जो मिली है, क्यों मिली? यू डिलीवर अस गवर्नमेंट्स, ये डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप किया, जैसे कहते ना ब्लिंक इट, तो ब्लिंक इट का काम कर रहे हैं कि आपको कहां वाली चाहिए, अच्छा ये वाली सरकार दे रहे हैं, तो सरीके गुनाह है।
6: राहुल गांधी SIR को लेकर,
7: राहुल गांधी, मैं दिल्ली में बहुत जवाब दे चुका हूं, हताश हारे हुए लोग हैं।
0: And my colleagues join me live on this broadcast on this developing story. Vasudha, political editor, NDTV, joins me live from outside Sagar Ratna. Also joining me live, Ankit Tyagi and consulting editor Rahul Srivastava. I'm going to go to Ankit first. Ankit, we believe that the Congress MPs are first to converge at Sagar Ratna to welcome the rest of the India bloc. What's happening around you as we speak? Have some of these MPs started getting to the venue?
2: Not yet, Vedika. In the next 5 to 10 minutes, we are expecting the member of parliament from the opposition bloc to be present here at the Sagar Ratna here right now in the heart of the national capital. And this is a very strategic location. Let me just very

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit. From friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand. हर रोज़।

0: प्रांत प्रचारक रहे, एक कमरेडरी बनती है। सरसंघ चालक अपना प्रधानमंत्री जी और दत्ता जी दोनों ने विद्यार्थी परिषद में एक साथ काम किया। दत्ता जी इज नंबर टू इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो लंबे समय तक काम किया दोनों ने एक साथ। तो वो एक वो उसका
1: ये अच्छा कोएलिशन बन गया है।
0: हाँ, शासन का एक अच्छा नियम भी वो भी है ना। और देखिए मैं दूसरी बात ये भी कहता हूँ कि संघ के जो लोग, संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक, संघ का जो पूरा ओवरऑल चलाता, तो नीचे स्वयंसेवक से लेकर के ऊपर अखिल भारतीय अधिकारी तक की सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है उसमें। परंतु तो भी संघ की जो टोली मान लीजिए, जिसमें पूजने सरसंघ चालक जी सरकारे व तीन अपना पांचों सह सरकारे व और एकाध दो लोग मनमोहन जो एकाध दो वरिष्ठ लोग हैं वो, और तो वो वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट NGO, they are representing one's words large, not NGO, words largest organization, from where the few members of the parliament, few ministers, few cabinet ministers and the prime minister have come out. So there is bound to be हमारे बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं, वो convey होती हैं, मगर एक caveat के साथ होती हैं कि आप इसमें से जितना कर पाएं, क्योंकि जहां आप बैठे हो वहां का आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो आप उसमें से जितना उस हिसाब से कर पाए आप इसको इम्प्लीमेंट करें
1: यथाशक्ति। एक बड़ा रिस्क है आरएसएस के लिए, इतना बड़ा संगठन, वो अपनी पूरी एनर्जी, एफर्ट, इन्वेस्टमेंट एक आदमी की जेब में डाल देता है, अ प्राइम मिनिस्टर। इट डज, रिस्की काम है।
0: रिस्की काम मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिस्की काम है। आपको क्या लगता है, एक प्रधानमंत्री को निर्णय लेता तो अकेला थोड़ा ना कर लेता प्रधानमंत्री भी निर्णय? कोई भी एक निर्णय, आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने परिवार में, फॉर दैट सेक, आप एक कोई भी एक निर्णय अपने आप कर लेते हो क्या? और हमारे यार मतलब कोई एक दायित्व पर एक कार्यकर्ता रहता है, हमें लगता है यार इसने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, इसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी? मगर जो दूसरा आता है वो उससे वहाँ से आगे लेके चलता है, तभी तो इतना बड़े हुए पिछले 100 साल में।
1: क्योंकि एक समय आया था जब सुदर्शन जी को बोलना चाहिए था, दैट पीपल लाइक अडवाणी एंड वाजपेयी शुड रिटायर।
0: दैट वाज इन 2000 प्रोबेबली 2002-3 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
1: तो यानी तब क्या हुआ था?
0: उस समय तो मैंने वही बोला ना, गलतियों से सीखा। उस समय दत्तोपन ठेंगड़ी की भी स्टेटमेंट थी, अर्थमंत्री नहीं अनर्थमंत्री है। तो उस समय ये भी था, उस समय अशोक सिंघल जी का आपने बताया बहुत नाराज हुए थे,
1: बहुत नाराज हुए
0: 1989 में, और अशोक सिंघल जी तब से लेकर लगभग एक
1: 2003
0: वो उस समय वो भी नाराज हुए थे। तो
1: वो शिलादान था।
0: हाँ, वो

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: डिप्लोमेटिक लीडर्स।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: डिप्लोमेटिक लीडर्स एंड इंडस्ट्री आइकॉन्स यूनाइट at the NDTV World India Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
2: He's a very smart man and a great friend of mine, actually, a great leader.
3: But Modi, he's great. Prime Minister, he's great.
4: Prime Minister Modi, true friend of Australia and a very dear friend of mine.
5: Dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. Hans loves you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थोर मसाला।
4: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
5: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
8: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
4: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज,
5: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
6: एक परिवार अटूट भरोसा।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
8: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
5: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
6: एंड सेनको सपोर्ट एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: केसरी त्यौहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
3: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
9: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
12: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
13: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
14: कुछ इससे भी अनोखा
13: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Rang rang rang rang rang rang din rang rang din re dekho kaise bhi ho din rang bana rahe
2: bojhe paints rang bana rahe
3: thode mein zyada swaad ye hit to hai iski khaas baat
4: wow mama kya swaad hai
5: are mere raja
6: sabka raja aur masala
7: senko se mera nata saalon purana hai ye mere liye bas ek brand nahi hai ye hai ek legacy
8: you know डिजाइन्स कितने हैं लाख से भी ज्यादा डोर
9: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड खूबसूरत कारीगरी भी हाई क्वालिटी भी
10: एक परिवार अटूट भरोसा
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
0: डिप्लोमेटिक लीडर्स एंड इंडस्ट्री आइकॉन्स यूनाइट एट द NDTV वर्ल्ड इंडिया जापान समिट From friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand. हर रोज
12: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स, रंग बना।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
3: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: Diplomatic leaders and industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit. From friendship to future. As we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
12: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
13: कुछ इससे भी अनोखा
12: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग

जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे, बोझ पेंट रंग बना रहे।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट्स रंग बना रहे।

0: जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
2: 25 years ago today, on the 7th of October 2001, Narendra Modi took oath as Chief Minister of Gujarat. Today, the 7th of October 2026, marks a quarter century as the head of an elected government. A journey from Gandhinagar to New Delhi for Narendra Modi, from leading a state to leading the country. The BJP is marking that milestone through its Seva Sankalp campaign, placing public service at the center of its celebration.
3: The Prime Minister has emerged unscathed out of the security situations which the country has faced. Here were some of the biggest challenges and opportunities for Narendra Modi for Fortress India.
0: Jammu Kashmir mein Article 370 ki samasya aisa lagta tha ki ye antahin hai aur desh इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा।

0: जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
2: 25 years ago today, on the 7th of October 2001, Narendra Modi took oath as Chief Minister of Gujarat. Today, the 7th of October 2026, marks a quarter century as the head of an elected government. A journey from Gandhinagar to New Delhi for Narendra Modi, from leading a state to leading the country. The BJP is marking that milestone through its Seva Sankalp campaign, placing public service at the center of its celebration.
3: The Prime Minister has emerged unscathed out of the security situations which the country has faced. Here were some of the biggest challenges and opportunities for Narendra Modi for Fortress India.
0: Jammu Kashmir mein Article 370 ki samasya aisa lagta tha ki ye antahin hai aur desh इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा।